0: ¡Abra!
1: करेंगे हाँ फैसला क्या सच है क्या झूठ ऐसा जिनका छोड़ी ढाका लूट छोड़ करें